अरे साहबानी भी हो कोई किल यो कुलों लोलों लालों लोलों लोलों लालों लालों लालों लालों लोलों तो यो कुलों लालों लोलों लोलों अरे साहबानी लालों लालों